0: ले समी एप्ली का मिना वे मावाला सुझा जा तुम्हारे माला सुझा रे बोलो नोरी कोई मावाला सुझा
1: माहे देखो आप ये ताऊ जो
2: नो असी नो ले रेस्पोंड ट्रेंटिलो ना ओये इधर को ला वो मेरो डिफरेंटे
1: एस्टोय डिफोनिको
2: Para los que quieran saber quién es Xuxa.